0: Absolutely, Shreya. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Well, like my colleague Shreya was mentioning, Rahul Gandhi's Twitter comments have now in fact triggered a huge controversy. The leader of opposition, Rahul Gandhi, has triggered a fresh political controversy after remarks made during a rally in Rae Bareli went viral, in which he targeted the Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and even the RSS. Addressing Congress workers, Rahul Gandhi said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that the Prime Minister, the Home Minister and the organisation have betrayed Dr. Ambedkar and attacked the Constitution. Now, these comments have drawn strong criticism from the BJP, accusing Rahul Gandhi of making irresponsible statements out of political frustration. BJP leaders say that the remarks reflect what they call the Congress leader's anarchic mindset.
1: नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है,
2: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे, गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
3: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है, तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिलने या खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
4: ओके सर, पांच
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
0: Well, let's now turn our attention to Tamil Nadu. The Vijay Sarkar is set to expand with more ministers taking oath, including the induction of Congress and possibly Muslim League MLAs. 23 MLAs are set to be sworn in as the cabinet ministers, as two Congress MLAs are expected to be inducted into the cabinet. It is also believed that one UML minister is set to be inducted, while the entry of VCK still remains unclear. Tamil Nadu Transport Minister Adhavarjan reasserted the government's stance, saying that allies and the chief minister continue to be united and that the cabinet will function like a family. Let's now take you through updates coming in Tvisha's death mystery. Now, the Tvisha death case is now snowballing into a major political and investigative flashpoint, with the Madhya Pradesh government set to seek a CBI probe into the case. Chief Minister Mohan Yadav has assured the family of justice and will write to the CBI requesting for a takeover of the investigation. Meanwhile, Tvisha's husband Samarth Singh remains on the run for the ninth straight day, with a 30,000 rupee reward announced for information on his whereabouts and a lookout notice now issued. The family has also alleged serious lapses in the probe and the autopsy process, even as Tvisha's body remains at the AIIMS Bhopal after a second autopsy request was denied by the court. Well, let's take you through more updates coming in at this hour. Well, the internet is once again obsessed with the now viral Melody chemistry. From selfies at the Colosseum to a candy-triggered beam storm, Prime Minister Modi's latest meeting with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni has turned into a full-blown social media spectacle. And this time, even Dalal Street and the makers of Melody Toffee got pulled into the frenzy. Here's a special report on, of course, all that's creating the buzz. Take a look.
4: Prime Minister Modi

0: Let's now take you through the top story of the hour. Well, Prime Minister Narendra Modi, after returning from his five-nation tour, is set to chair a key union cabinet meeting, with speculation over a possible cabinet reshuffle. At present, the union cabinet has about 72 members, while a maximum of 81 ministers can be appointed. Well, there is some speculation that some new ministers may be inducted, while some current ministers could be dropped based on performance. Discussions have also begun regarding the formation of BJP President Nitin Naveen's new team. It is believed that big roles would be assigned to leaders under the age of 50, as the focus remains on the next two decades and building a new ring of leadership. Well, we have some breaking news coming in at this hour. Let's take you through it. Tracking the latest updates coming in at this hour, we're understanding that a complaint has been filed with the Delhi police against the leader of opposition, Rahul Gandhi. The complainant demands for FIR over use of the term traitor for the Prime Minister and the Home Minister. Abhishek Dubey, spokesperson of the BJP Yuva Morcha, has submitted a complaint at the Tigri police station, which essentially lies in South Delhi, seeking the registration of an FIR against Congress leader Rahul Gandhi for using the term traitor in reference to the Prime Minister and the Home Minister Amit Shah. That's the latest update that we have for you at this hour. A complaint has been filed with the Delhi police against Rahul Gandhi. The complainant has demanded for an FIR over the use of the term traitor for the Prime Minister and the Home Minister. Let's also listen into the reactions coming in on this.
1: Uttar Pradesh mein jansabha ko sambodhit karte hue नेता विपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग आज देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ किए हैं वो बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। उससे साफ साफ इनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है। एक इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। क्या वो पढ़ाई किए इटली में, क्या वो पढ़ाई किए विदेश में, जिसको ये नहीं समझ में आता कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पे बैठे व्यक्ति के खिलाफ किस तरीके के शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जनता के सामने कर रहे हैं। जो जनता प्रधानमंत्री जी को चुन के भेजी हुई है, जो जनता गृह मंत्री जी को चुन के भेजी है, आप उस जनता के को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Well, my colleague Shreya Ghosh joins us on the broadcast with the latest updates coming in. Shreya, walk us through the details. We understand that a complaint has now been lodged against Rahul Gandhi, and the complainant is also demanding that an FIR be launched against the leader of opposition over his traitor remarks against the Prime Minister and the Home Minister.
2: Well, that's right, Shreya. Congress leader of opposition Rahul Gandhi, he was addressing a rally, a Bahujan Swabhiman Sabha in Ray Bareilly, Uttar Pradesh, and he openly called Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah traitors or gaddar, accusing the BJP RSS of selling off the country to industrialists, referring to Mr. Adani, Mr. Apani. And he also attacked the constitution and undermined the legacy of Ambedkar and Mahatma Gandhi and local revolutionary Veera Pasi. He also went on to urge supporters to confront BJP RSS workers with these charges. And these remarks, considering he's the leader of opposition, these remarks triggered strong backlash, and also prompted, as you were saying, the BJP Yuva Morcha spokesperson Abhishek Dubey to file a complaint. And now we can see CM Yogi also said that, you know, Rahul Gandhi should apologize for this kind of a comment against the Prime Minister and the Home Minister of the country for defaming the leaders of our country and misusing his constitutional offices and creating social sort of discord. And therefore, this BJP Yuva Morcha spokesperson has demanded for an FIR, although till now we know that Rahul Gandhi has stood by his statement and has refused to apologize.
0: Absolutely, Shreya. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Well, like my colleague Shreya was mentioning, Rahul Gandhi's traitor comments have now in fact triggered a huge controversy. The leader of opposition, Rahul Gandhi, has triggered a fresh political controversy after remarks made during a rally in Rae Bareilly went viral, in which he targeted the Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and even the RSS. Addressing Congress workers, Rahul Gandhi said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that the Prime Minister, the Home Minister and the organisation have betrayed Dr. Ambedkar and attacked the constitution. Now, these comments have drawn strong criticism from the BJP, accusing Rahul Gandhi of making irresponsible statements out of political frustration. BJP leaders say that the remarks reflect what they call the Congress leaders' anarchic mindset.
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अबे अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
4: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
5: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है। तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिल जाएगा खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
6: ओके सर, पांच
7: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
0: Well, let's now turn our attention to Tamil Nadu. The Vijay Sarkar is set to expand with more ministers taking oath, including the induction of Congress and possibly Muslim League MLAs. 23 MLAs are set to be sworn in as the cabinet ministers, as two Congress MLAs are expected to be inducted into the cabinet. It is also believed that one UML minister is set to be inducted, while the entry of VCK still remains unclear. Tamil Nadu Transport Minister Adha Varjan reasserted the government's stance, saying that allies and the chief minister continue to be united and that the cabinet will function like a family.

0: spokesperson.
1: Arshia, there seems to be politics, and of course, there seems to be uproar over what Rahul Gandhi has said in a Raebareli rally. But thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Meanwhile, let's also take our views through what exactly happened when the leader of opposition, Rahul Gandhi, has triggered a fresh controversy, a political controversy like my colleague was just mentioning, after remarks made during a rally in Raebareli went viral, in which he targeted the Prime Minister and the Home Minister, Amit Shah, and even the RSS. Addressing Congress workers, Rahul Gandhi said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that the Prime Minister and the Home Minister and the organisation have betrayed Dr. B.R. Ambedkar and even attacked the Constitution. Now, the comments have drawn strong criticism from the BJP, accusing Rahul Gandhi of making irresponsible comments out of political frustration. BJP leaders say that the remarks reflect what Congress leaders, in fact, Rahul Gandhi's anarchic mindset. This is what the BJP is saying.
2: आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
3: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
4: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है। तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिल जाएगा खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
6: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
1: Well, moving on to more updates coming in at this hour, while Prime Minister Modi, after returning from his five-nation tour, is set to chair a key union cabinet meeting, with speculation over a possible cabinet reshuffle. At present, the union cabinet has about 72 members, while a maximum of 81 ministers can be appointed. There is speculation that some new ministers may be inducted, while some current ministers could also be dropped just based off performance. Discussions have also begun regarding the formation of BJP President Nitin Naveen's new team. It is believed that big roles would be assigned to leaders under the age of 50, as the focus remains on the next two decades and building a new line of leadership. Well, my colleague Ishwara joins us on the broadcast with more updates coming in. You know, Ishwara, that's an important meeting that the Prime Minister will be chairing, of course. And, you know, we've seen this policy of the BJP where it says either perform or perish. We've seen the BJP drop senior ministers in the past as well. Walk us through the details. Which are some of the names that are doing the rounds?
7: Well, as soon as Prime Minister will return from the five-nation tour, Prime Minister Narendra Modi would be interacting with his Council of Ministers. He'll chairing this key high-level meeting amidst the West Asia conflict and also the economic crisis that is looming. Certainly, it is a key ministries presentation which are on cards as well, and the Councils of Ministers will be meeting for the first time amid the West Asia conflict. Certainly, there are

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: Shepherd, new young faces could be inducted, is what the sources are also indicating to us.
1: Aishwarya, you mentioned there will be a string of presentations today. Do we have any word on which ministries are likely to come under the sharpest scrutiny from the Prime Minister's office? And also break down for us, politically, how are BJP insiders reading this meeting?
0: Well, as I said, it is almost 1 year when the Council of Ministers met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi. And it is almost a dozen of ministries that will give presentation. The secretaries from different departments have also been called in. Our Council of Ministers consists of just not the cabinet ministers, but also the ministers of states, independent charges, cabinet ministers as well. And the performances will be scrutinized by the top leadership of the Modi cabinet. Of course, as I mentioned, there are key ministries which includes energy, fertilizers, chemicals, power, labor, and railways, finance, that will all give presentations. Road Transport Ministry has been also told to give presentation. So almost a dozen of ministries will get their presentation, and a whole of the work that has been done in the last 12 years that will be presented in this Council of Ministers meeting as well. Remember the last time when this Council of Ministers met in June last year, we saw just after a week, there was cabinet reshuffle that took place as far as the Modi cabinet ministry is concerned. And now at this point in time, what we have been also given to understand is that several of those ministers which have given an additional charge in the organization as far as Nitin Naveen's team is concerned. For example, Minister of State in the Finance, Pankaj Chaudhary has been given the president charge of the UP BJP. So there are also, things on cards as far as the Nitin Naveen's new team is concerned. And the Modi cabinet that we will see in the near future will have those people, those are not in the organization. So independent work will be given to them, is what the sources close to the government has also been pointed out to us. And certainly how would be Nitin Naveen's team will look like after the cabinet reshuffle will take place, that will also come into picture.
1: Indeed. Aishwarya, as always, thank you so much for taking us through what to expect. We will, of course, revert to you for regular updates. So Prime Minister Narendra Modi returns to Delhi after a five-nation diplomatic tour and is set to chair a key Council of Ministers meeting, with speculation over a possible cabinet reshuffle. At present, you must note, the Union Cabinet has 72 members, while a maximum of 81 ministers can actually be appointed. So there is speculation that this may be larger than routine ministerial musical chairs, as Aishwarya Jain is also reporting. Some new ministers may be inducted, while some current ministers could be dropped, all based on performance. Meanwhile, you also must note that discussions have also begun regarding the formation of BJP President Nitin Naveen's new team. You see, under the new BJP president, there is growing emphasis on building a younger leadership bench, particularly leaders under the age of 50, who could carry the party through the next two decades. All right, let's just delve deeper for a moment into this organizational reset. The team to be announced, as far as Nitin Naveen is concerned, we are expecting the leaders to be below the age of 50. They may get a big role. Basically, youth and experience, a combination of those two factors, is being prioritized in the formation of this new team. New National General Secretaries are likely. State leaders, we're told, may get a national role. And as far as women are concerned, we are expecting a greater representation as far as Nitin Naveen's team is concerned. The RSS also, meanwhile, is keen on ideologically committing to this team. And this new BJP team will target the next 15 to 20 years. So the vision that they are laying out is for the next two decades. This is what sources have informed NDTV. All right, on that note, let's turn our attention to the other story we're tracking on NDTV this morning. The political temperature has sharply escalated after the BJP has formally moved against Leader of Opposition Rahul Gandhi over his traitor remarks targeting Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. Basically, the BJP has demanded that an FIR should be filed against Rahul Gandhi. The BJP is terming his language unconstitutional. And earlier, Rahul Gandhi had said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that Prime Minister and the Home Minister and the organization have betrayed Dr. B.R. Ambedkar and attacked the Constitution. These comments have now drawn strong criticism from the BJP. They are accusing Rahul Gandhi of making irresponsible statements out of political frustration. Here are the political reactions you need to listen to regarding the matter.
2: सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अम्बेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
3: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
4: देखिए कांग्रेस की हालत ऐसा, एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है, तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिल रहे हैं खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
5: ओके सर, पांच
6: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
7: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए। कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
8: देखिए हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेजर बुलाती है, तम तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तम तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को ठेठ किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेडर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ।
1: Alright, let's move on now and get you the latest update from West Bengal, where Chief Minister Shubhendu Adhikari yesterday officially unveiled his government's new policy against Bangladeshi infiltrators under the CAA. The Chief Minister, while speaking at the State Secretariat during a land handover ceremony to the BSF, said that infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action in coordination with the Border Guards Bangladesh. You must note, this comes just days after the Shubhendu government announced the handover of nearly 600 acres of land along the Bangladesh border, along with around 120 acres in the critical Siliguri corridor to the BSF for border fencing in the state. Meanwhile, the Trinamool Congress has launched a sharp attack on the new Bengal government and said Chief Minister Shubhendu Adhikari is doing all of this for publicity.
9: তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স, তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে, এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো।
10: দেখিয়ে আমারই সরকার জো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জি কে নেতৃত্বে মে পশ্চিম বঙ্গাল মে চল রহি হ্যায়, উন উসকা উস সরকার কা নীতি ইরাদা ইয়ানি নিয়ত একদম স্পষ্ট হ্যায়। राष्ट्र सर्वोपरि कंट्री फर्स्ट इस मंत्र को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि बंगाल में जो भूमि पिछली सरकार ने नहीं दिया था, जिसके कारण बीएसएफ ने फेंसिंग नहीं कर पाए बीएसएफ, और 550 किलोमीटर लंबा इलाका, लंबा बॉर्डर वो बिना फेंसिंग का रह गया, और जिससे घुसपैठ हुई, इलीगल एक्टिविटीज हुई, क्योंकि हर जगह पे बीएसएफ तो खड़ा नहीं रह सकता।
5: ये तो उनका वादा था चुनाव में कि वो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देंगे, उसी को पूरा किया। इसको लेकर इतना खबर बढ़ाने का कुछ नहीं है, जमीन तो उधर बंजर पड़ा रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, इसी को करके वो इतना पब्लिसिटी क्यों ले रहे।
11: सेफ्टी सबसे पहले, घुसपैठिया को हम लोग इधर भी नहीं रहने देंगे और उस पार से घुसने भी नहीं देंगे। तो मैं मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही स्टेप लिया है और लैंड दिया है, आगे जाके पूरा जो 500 किलोमीटर जो जगह है, जिस जगह में फेंसिंग नहीं था, वो क्लियर हो जाएगा।
1: Alright, let's turn our attention to the latest developments as far as the Twisha Sharma death case is concerned. It is now snowballing into a major political and investigative flashpoint, with the Madhya Pradesh government set to seek a CBI probe into this case. Chief Minister Mohan Yadav has assured the family of justice and will write to the CBI requesting a takeover of this investigation now. But meanwhile, Twisha's husband Samarth Singh, he remains on the run for the 9th straight day now, with a 30,000 rupee reward announced for any information on his whereabouts. And as we mentioned earlier, lookout notice has already been issued. The family is also alleging serious lapses in this probe and the autopsy process, even as Twisha's body remains at AIIMS Bhopal after a second autopsy request was denied by the court. Meanwhile, we have a crucial reaction lined up for you. Twisha Sharma's family has demanded the removal of her mother-in-law, Giribala Singh, from the State Consumer Forum. NDTV spoke to Madhya Pradesh Minister of Food and Civil Supplies, Govind Singh Rajput, regarding the matter. Here's what he told us.
12: देखिए, मेरी संज्ञान है, बहुत ज़्यादा मामला तो है नहीं। मैं भी आप लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अखबारों में देख रहा हूँ। जहाँ तक पर्टिकुलर जो आपने नाम लिया, वो जिला भोपाल जिला फोरम में अध्यक्ष हैं, और इस पर जो नियंत्रण होता है वो पूरा का पूरा आयोग का होता है। हमारे मंत्रालय में जरूर ये पोर्टफोलियो आता है, लेकिन नियंत्रण आयोग का होता है। तो आयोग के लिए जांच के लिए लिखा गया है, अब जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
13: सर, वो जमानत पर है, उनके परिजन उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या थॉट करते हैं मुख्यमंत्री से भी उनके परिवारजन?
12: ये निर्णय तो आयोग लेगा ना, आयोग के लिए लिखा है। आज ही आयोग के लिए मैंने बात की थी ACS से, उन्होंने आयोग को लिखा है और आयोग निर्णय लेगा, जल्दी निर्णय करेगा।
1: Well, on that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you. Do stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.

0: that now the Congress is no longer the same as it was at the time of independence. It has become a Maoist Muslim Congress is what Girraj Singh has to say. Girraj Singh also leveled serious attacks on Rahul Gandhi and stated that these people have abused Prime Minister Narendra Modi. No matter how much they abuse, the people of country will love Prime Minister Narendra Modi. And Rahul Gandhi is stuck in the quagmire of corruption, is on bail, and the language used for Prime Minister is certainly an insult for the country, and just not attacked Narendra Modi, but also attacked the constitution. And this is what the Congress ecosystem clearly describes. It is not the first time, remember, Rahul Gandhi has used the term traitor for any BJP leader earlier as well. Remember, Rahul Gandhi used the term traitor to Ravneet Singh Bittu, the union minister in Modi cabinet as well. And that time also, huge controversy erupted.
1: Right. Well, thank you, Aishwarya, for getting us those details. And of course, as we are talking about, the BJP now has filed a complaint against Rahul Gandhi after that traitor remark made against the Prime Minister and against Amit Shah. Now, the BJP has demanded that an FIR, this is a report of FIR that needs to be filed against him. And the BJP has also termed his language unconstitutional. Earlier, Rahul Gandhi had said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that the Prime Minister, the Home Minister and the organization have betrayed Dr. B.R. Ambedkar and attacked the Constitution. The comments have drawn strong criticism from the BJP, accusing Rahul Gandhi of making irresponsible statements out of political frustration.
2: RSS कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
3: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे, गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
4: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना, ये चल रहा है। तो इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिलने या खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
5: ओके सर, पांच
6: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति में जहाँ सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
7: पहले से तय है, कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं ऐसा मत सोचिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था, अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया है।
8: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए। कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
9: उनका इतना प्रेम है, देश प्रेम इतना उनके

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आरती और मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
1: पहले से तय है, कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं ऐसा मत सोचिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था, अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया।
2: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखने में कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
3: उनका इतना प्रेम है, देश प्रेम इतना उनके दिलों के अंदर है, दिल की बात जबान पे उनकी आती है। वो चाहते हैं कि हमेशा नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो आगाह करते देश को, देशवासियों को, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड का संकट हो, हर बार उन्होंने आगाह किया देश को। ये उनकी ड्यूटी भी है एज ए नेता प्रतिपक्ष, उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये आज जो हालात है सब चिंतित है, एक तरफ तो

0: जो नियंत्रण होता है वो पूरा का पूरा आयोग का होता है। हमारे मंत्रालय में जरूर ये पोर्टफोलियो आता है लेकिन नियंत्रण आयोग का होता है, तो आयोग के लिए जांच के लिए लिखा गया है। अब जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
1: सर, वो जमानत पर है, उनके परिजन उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या थॉट करते हैं? मुख्यमंत्री से भी उनके परिवारजन
0: ये निर्णय तो आयोग लेगा ना। आयोग के लिए लिखा है, आज ही आयोग के लिए मैंने बात की थी ACS से, उन्होंने आयोग को लिखा है और आयोग निर्णय लेगा, जल्दी निर्णय करेगा।
2: On that note, we slip in a short break. Once we're back, we'll talk more about the peace talks being in limbo. Are Donald Trump and Netanyahu on the same page when it comes to ending the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थ और मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: Let's start with the breaking news coming in of that row that's erupted over the national song, followed by the national anthem, and then only the Tamil anthem that has been played at that cabinet expansion of the TVK. Now, this is the Tamil Nadu anthem that was only played third. Do remember, this is exactly what had played out at the time of the swearing-in ceremony of the Chief Minister of Tamil Nadu. So, the DMK again trading its guns, saying that it is the Vijay Sarkar, in fact, disrespecting the pride of the people of Tamil, and Vijay promise that this will not happen again, because last time around they said that this was in the governor's hand, this wasn't in their hands, and which is why this was this happened. And now again this has happened, but again this was in the Lok Bhavan. So what kind of role does the TVK really have as far as that protocol is concerned? Let's get to the latest when it comes to Twisha's death probe that's now snowballing into a major investigative flashpoint, with the Madhya Pradesh government set to seek a CBI probe into the case. NDTV has accessed an audio. This is in which there's an heated exchange that one can hear between Twisha's brother and Twisha's mother-in-law. The brother is expressing anger over questions that are being raised by the mother-in-law on the character of Twisha. The family has alleged that following her death, it is the mother-in-law who rang up the Lokayukta officials, magistrates and police officials and even technicians and attempted to influence the case. The case has also brought the mother-in-law's designation that has the president of the Consumer Forum under the scanner, with the family demanding that she be sacked from that position.
12: कंप्लीट नाटक, या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको मारे आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर, तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी, खाने के लिए बोलो। तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा। बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं, बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, चार बातें भी होती हैं। लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि इसकी जो दो हस्बैंड्स को लोग लड़कियां बहुत इजिली कन्विंस करते हैं।
11: And NDTV has access to an exclusive conversation that took place, in which Twisha's brother is asking questions from the mother-in-law. This conversation took place on the 22nd of April, which was recorded by the brother. Let's listen in to what was being asked and what really was said.
13: I want to understand, like, why those questions have to raise as to Peter, if you have stepped there legal.
14: Who asked?
13: Was there any point?
14: Who asked this?
13: Amar's distribution.
15: I didn't say step with anybody. I said the kind of intimacy.
13: Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor?
14: When was this coming?
15: Sundo. What was the context? She was saying that he keeps accusing me. She says, Samar. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said, he said he never said that. I don't know, he said and we said, we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Resham Pura, Gwalior, I have worked Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. Some people sell their brains so they earn. They are also selling our brains and so they earn. Some people sell their bodies so they earn. There's no problem. But some people do it to earn, to climb the social ladder. Is there any such thing? So she said, never, it's never happened. So, and I said, any other thing that even after the marriage, whatever has happened has happened.
13: Right.
15: But will you waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slip.
13: So it was a speculation from her.
15: Someone said that she's had multiple.
13: Hmm.
15: I said, it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last, even after the marriage, jo bhi piche ho gaya, so ho gaya.
13: That brings me to the second question. The second follow up question was, will you do it in the future?
15: Yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question?
13: Is it to your own babu?
15: Why not to any human being? I would ask the question. Somebody who's telling who has had this kind of an intimacy in the past.
13: So do you feel having multiple partners at one point, not at the same time?
15: Is it not relevant to ask that after marriage also will it continue? Because sometimes it becomes a habit. Promiscuity, it can be a habit.
13: Why was that question
15: there? Why not? Why not? Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed. She hid about other people also. She said, yeah. See, I asked, see.
13: Stayed with you.
15: 8 minutes. She said, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out and hanging out like dating. You know what you understand by dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy.
13: Yes.
15: So was it of that level? She said, yeah, sometimes it has been.
13: Yes.
15: So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing?
13: I'm not cross-questioning.
15: No, it is my right to ask my daughter-in-law. If you have been
13: Will you be going out with other men?
15: Why not?
16: Why not after marriage? It will not be allowed. Of course, yes.
15: This is just not allowed.
16: Of course,
13: exactly.
16: Yes. In our household, it's not allowed.
15: Why not?
13: Priya, please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask your bahu if she is going to hook up with other men?
17: But this way, a conversation is happening. Shaadi ke pehle baat bhi thi kya?
15: No, she has not told. She has not told.
13: Who has not told you?
15: No, she has not told.
13: She has not told us. She has told Samarth.
17: उन दोनों के बीच में था या और बायर भी डिस्कसिंग था. आई डिड नॉट टू हियर ऑल दोस थिंग्स दैट इज नहीं है यहां पे.
13: मैं भी नहीं था इसमें, बट इट इज पिंचिंग मी
15: कि अगर इट शुड पिंच यू. दिस इज बीन डन बाय
13: सिस्टर इन द हाउस इज आस्किंग सच क्वेश्चंस टू हर ओन बहू.
15: व्हाई आर बहू कम सी
16: बहू इज अ डॉटर. बहू इज अ डॉटर. शी कुड हैव आस्क्ड हर डॉटर आल्सो द सेम क्वेश्चन.
15: सी आई वुड हैव चेक्ड माय
16: डॉटर आल्सो
15: फ्रॉम एनीथिंग. सी दैट इज द प्राइड ऑफ द फैमिली. आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हर्ट बाय दिस. Why you are hurt?
13: I don't understand why you are not hurt by this.
15: But what is the hurt? Tell me what is the hurt about.
11: Switching tracks to break news coming in. Let's just cut across to the Commerce Minister who is addressing a press conference.
18: भाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय, अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार-बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है वो नजर आती है. जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं. अब बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है. देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है. जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है. क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना उसको हम गद्दारी कहेंगे या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा। मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है abuses are the weapon of the weak। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड्स के साथ इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट वहां के किंग हैरल्ड V5.3 से। अब यह बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
11: And there we have the Commerce Minister questioning Rahul Gandhi's Twitter remark, and this really comes about close on the heels of what Rahul Gandhi had said about the Prime Minister Amit Shah and the RSS, calling them traitors who were attacking the Constitution every day and had allegedly sold the country's interest to select industrialists, triggering a sharp political row. And that is, of course, now the BJP reacting, with the Commerce Minister there also questioning Rahul Gandhi when he goes abroad, what is it that he really does, and that is being questioned by the government.
19: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
20: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे, गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
21: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा, एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है, और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना, ये चल रहा है। इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिल जाएगा खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
22: ओके सर, पांच राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
23: पहले से तय है, कोई राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री जी कोई बैठक बुलाते हैं ऐसा मत सोचिए। ये मंत्रिपरिषद की बैठक है, शुरू से होते रहता है, और उसी संदर्भ में ये बैठक है। राहुल गांधी को क्या कहा जाए, राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर, और अब वो कांग्रेस रहा नहीं जो कांग्रेस आजादी के समय था। अब ये माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया।
24: बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए। कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए।
18: उनका इतना प्रेम है, देश प्रेम इतना उनके दिलों के अंदर है, दिल की बात जबान पे उनके आती है। वो चाहते हैं कि हमेशा नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो आगाह करते देश को, देशवासियों को, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोविड का संकट हो, हर बार उन्होंने आगाह किया देश को। ये उनकी ड्यूटी भी है एज ए नेता प्रतिपक्ष, उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये आज जो हालात है सब चिंतित है। एक तरफ तो देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है।
0: देखिए, हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेजर बुलाती है, तब तो आप वो शो नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को ठेठ किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ।
11: Switching tracks now to West Bengal, and it's the Chief Minister Suvindu Adhikari who's making, you know, these moves just as he's been elected as the Chief Minister. Now, this time around, these are back-to-back big decisions that have been taken, and he has decided that the singing of Vande Mataram is made now compulsory during assembly prayers in madrasas across the state. But the move has triggered a fierce political backlash. The Congress has strongly objected, accusing the BJP government of weaponizing nationalism for political polarization, and claimed that the BJP is deliberately trying to portray Muslims as outsiders in order to deepen the divide. Whereas the BJP has doubled down on the decision and slammed the opposition, the BJP says that Vande Mataram is a historic national song tied to India's freedom as far as freedom movement is concerned, and that objecting to it is insulting the spirit of the nation.
1: देखिए, संविधान के अंदर जो प्रावधान है, ये संविधान हमारे लिए ग्रंथ है। ये भारत के अंदर कानून को लागू करने की किताब है और इसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। संविधान में बिल्कुल क्लियर है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धार्मिक इदारों के ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक उनके ऊपर नहीं होगी। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि मैं आपसे कहूं कि साहब आप जाओ और मस्जिद के अंदर और हमारे साथ बैठ करके आप भी नमाज पढ़ो खड़े होकर के? नहीं ना, तो आप मुझसे ये क्यों उम्मीद करेंगे कि मैं खड़े होकर के पूजा करूंगा? मैं मंदिर भी जाता हूं।
2: The moment Suvendu Adhikari ji government has come to power in Bengal, it has been fulfilling all the promises, whether it's women's security, women's safety, whether it's Rashtra Samman, Rashtra security, border fencing or removing of the Ghuspaitias. Now yet another big decision. Now there will be compulsory singing of Vande Mataram, not just in schools but also in madrasa. For a long time there was a government in West Bengal which was doing Tushtikaran Pro Max. It was giving all the money to the madrasas, more money to madrasas than for entire North Bengal. And it was allowing that Sar Tan Se Juda slogan can be given, Babri Zindabad slogan can be given, but if you say Jago Ma, Jai Shri Ram or Vande Mataram, then it is a problem. This entire ecosystem now is objecting to Vande Mataram. Why are they against this national song?
3: मैं मानता हूं कि वंदे मातरम को लेकर के किसी भी तरह की किसी को भी सांप्रदायिकता का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए। जो लोग जो है वो वंदे मातरम को लेकर के सांप्रदायिक असहिष्णुता और स्पृश्यता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अनटचेबिलिटी और इंटॉलरेंस का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो देश के सौहार्द के माहौल के ताने बाने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना।
11: From West Bengal, let's just switch our attention now to Mumbai. And this is in, of course, Maharashtra. Tensions are flaring as far as Bandra East is concerned after a demolition drive targeting the alleged illegal encroachments turned violent. Authorities raised an illegal mosque structure as part of Maharashtra government's anti-encroachment crackdown. The situation escalated after protesters allegedly pelted stones at the police during the operation, triggering heavy security deployment in the area. And the opposition has slammed the government of Maharashtra over this demolition drive. Aditya Thackeray claimed that the government is deliberately trying to worsen the situation and diverting attention from core public issues. Meanwhile, the BJP launched a sharp counterattack, accusing the opposition of backing land jihad politics and appeasement politics as well.
18: आखिरकार जो लैंड जिहाद वोट जिहाद लव जिहाद में मानने वाले उद्धव ठाकरे थे ना, राहुल गांधी MIM मुस्लिम लीग इन सबको सबक मिला। जो बांग्लादेश थी रोहिंग्या जो अनधिकृत लोग रेलवे की जमीन पर कब्जा कर लेते, रेलवे लाइन बंद कर देते, बांद्रा रेलवे टर्मिनस का डेवलपमेंट रोक दिया था, उन सबको आज वापस बांग्लादेश भेजने की व्यवस्था की गई है।
4: तो ये हर जगह भाजपा करना चाहती है, लीगल इलीगल ये एक चीज होती है, लेकिन दूसरी चीज होती है कि कैसे आप कर रहे हो। सिर्फ आपको स्थिति बिगाड़नी है, आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है, हेडलाइंस बदलनी है, इसलिए सारी चीजें होती है।
5: कालपासून तिथे जे कोण अजितदादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
6: ये पहले तो ये झोपडपट्टी बनना नहीं चाहिए था, अगर वो इलीगल है तो वो दलाल वो अधिकारी जिन्होंने इन गरीबों से पैसे लिए उनका क्या, इंसानियत के नाम पर सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। इतनी गर्मी है उसके अंदर बच्चे लेकर सारे लोग रस्ते पे हैं, मुझे लगता है सरकार ने एक इंसानियत के नजरिए से इसको देखना चाहिए।
11: And now the internet is once again obsessed with the viral melody chemistry. And of course, we can't get enough of that, from selfies at the Colosseum to a candy-triggered meme fest. Now the Prime Minister's latest meeting with the Italian Prime Minister has turned into a full-blown social media spectacle. And this time, even Dalal Street and the makers of melody, Parle G Toffee, have now got pulled into this frenzy. Take a look at this report.
8: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
9: From diplomacy to meme fest, the internet just caught a brand new melody moment. Prime Minister Modi's latest meeting with Italian Prime Minister Giorgia Meloni has once again sent social media into a complete meltdown. The now iconic melody pairing has returned, and this time the internet turned it into a full-blown digital carnival. First came the Colosseum pictures, marking the return of the Modi-Meloni selfie, followed by a car ride around Rome and the dinner at a scenic restaurant. Next came the video that broke the internet, Prime Minister Modi and Meloni holding a packet of Melody candy. These memes, for instance, a hilarious take on the soaring sales of the Melody toffee. It even got to a point where Parle, the makers of the candy, put out a post thanking Prime Minister Modi for taking their product to the global stage. As the melody moment grew, the effect was evident on Dalal Street also, as Parle Industries' stocks hit the upper deck. But as it turns out, what people thought were stocks of the candy brand ended up being a real estate firm. And of course, the internet had something to say about it. But stand-up comic Atul Khatri, on the other hand, was quite proud of his investment decision. It's safe to say the internet has had a gala time with this viral diplomatic meet. From viral selfies to scenic dinners, the Modi-Meloni meets never disappoint. Bureau Report, NDTV.
11: In other news, just days after Donald Trump wrapped up his Beijing visit, we have Xi Jinping, who has rolled out a grand welcome, the red carpet for the Russian president at the Great Hall of the People. complete with that honor guard, waving flags and full state ceremony optics. But beyond the visual, this is a summit that's packed with geopolitical messaging, and we need to get you all the details that you really need to find out at this point in time. Here is our special coverage.
7: Vladimir Putin has arrived in Beijing for a high-stakes visit with Xi Jinping. The timing could not be more significant. The Russian president has arrived in Beijing just days after Donald Trump wrapped up his own high-profile visit to China. The rapid succession of high-profile meetings has sparked intense global speculation over China's diplomatic balancing act between Washington and Moscow. Xi Jinping personally welcomed Putin at the Great Hall of the People in Beijing. There was an honor guard, children waving Chinese and Russian flags, a full state ceremony, and powerful optics carefully designed for the cameras. The two leaders then sat down for high-level talks focused on economic cooperation, energy ties, strategic coordination, and what both sides are calling key international and regional issues. An official signing ceremony is expected later, with nearly 21 agreements and cooperation documents likely to be signed. Among the most important is a joint statement on strengthening China-Russia comprehensive strategic partnership, and another declaration calling for a multipolar world order and a new model of international relations. Energy is also high on the agenda. Reports suggest discussions are underway on a major new gas pipeline that could send up to 50 billion cubic meters of Russian natural gas to China every single year. Remember, China today is Russia's single biggest trading partner. After Western sanctions over Ukraine war, Beijing became an economic lifeline for Moscow. China is also now the largest buyer of Russian oil. Trade between the two countries has surged in recent years, crossing well over $200 billion annually. The relationship now spans energy, banking, defense cooperation, technology, infrastructure, and increasing use of local currencies in trade. This year also marks the 25th anniversary of the Sino-Russian Treaty of Friendship, signed in 2001, a relationship Putin today calls unprecedentedly high. For both leaders, this is bigger than bilateral diplomacy. So the optics matter, the timing matters, and the message is unmistakable. As Beijing tries to stabilize ties with Washington after Trump's visit, it is also making it clear that its strategic partnership with Moscow remains firmly intact. Bureau Report, NDTV.
11: And getting you more news, this is a sitting Pakistani senator, Rana Mahmood-ul-Hassan, who has triggered a massive international outrage after launching a vulgar

0: Tushar's death probe is now snowballing into a major investigative flashpoint. Tushar's husband, Samar Singh, has filed anticipatory bail plea in the higher court, in the Madhya Pradesh High Court, and is still absconding. NDTV's accessed an exclusive audio now in which a heated exchange can be heard between Tushar's brother and mother-in-law, Garibala Singh, who is a former justice. In the audio, the brother is expressing anger over the questions that were raised by Garibala Singh on Tushar's character. Tushar's family has alleged that following her death, Garibala rang up the Lokayukta officials, magistrates, police officials, and even technicians and attempted to influence the case. The case has also brought the mother-in-law's designation as the president of the Consumer Forum under the scanner, with the family now demanding that she be sacked from that position.
1: It's a complete natak. Ya to wo nahi samajhti ya uske andar wo jo do vyakti hain wo usko aade aate the. Ek taraf paudhe acche lagte hain, ek taraf bacche acche lagte hain, lekin paudhon ki dekhrekh nahi karna, bacche nahi paida karne hain. And mujhe cooking bhi acha lagta hai, lekin cooking mein le agar bolo बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर, तो नहीं नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी, खाने के लिए बोलो, तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा. बट देन आई सेड ठीक है मैं बोलूंगी भी नहीं, बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के एक टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, चार बातें भी होती हैं, लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि इसकी जो दो हस्बैंड्स को लोग लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं.
0: ऑलराइट, सो दोज आर द कमेंट्स Garibala Singh इज मेकिंग टू द मीडिया. हाउएवर, एनडीटीवी हैज एक्सेस्ड एन एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन बिटवीन Tushar's ब्रदर एंड हर मदर-इन-लॉ, व्हिच दिस टुक प्लेस यू नो प्रायर टू हर डेथ ऑन द 22nd ऑफ अप्रैल. एंड द मदर-इन-लॉ हैज सेड सेवरल थिंग्स दैट क्लियरली शो हर वेरी क्रिटिकल ऑफ Tushar, इवन फेयरली आउटरेजियस कमेंट्स on her character, on you know what she did before she got married. Just listen in to this conversation.
2: I want to understand like why those questions have to arise as to whether if you have slept with other people.
3: Who asked this?
2: Was there any point? Was there any point?
3: Who asked this?
2: Amma asked this to Tushar.
4: I didn't say slept with anybody. I said the kind of intimacy.
2: Yes. Did you do it for a favor? Did you do it to get some monetary benefit or some favor?
5: When was this conversation?
4: Sundo. What was the context? She was saying that he keeps accusing me. She says yeah, somewhat. It's a very foul word and it's not the way it's used. It's not to be said, he said he never said that. I don't know, he said and we said we don't know. But otherwise also I said, look, I have worked with Reshampura, Gwalior, I have worked. Some people do it out of compulsion. उनके पास जीवन का और कोई जरिया नहीं. सम पीपल सेल देयर ब्रेन्स सो दे अर्निंग, दे आर आल्सो सेलिंग आवर ब्रेन्स एंड सो दे अर्न. सम पीपल सेल देयर बॉडीज सो दे अर्न, देयर इज नो पर. बट सम पीपल डू इट टू अर्न, टू क्लाइम द सोशल लैडर. इज देयर एनी सच थिंग? सो शी सेड नेवर, इट्स नेवर हैपेंड. एंड आई सेड एनी अदर थिंग दैट इवन आफ्टर द मैरिज व्हाटएवर हैज हैपेंड इज हैपेंड, बट विल यू waver on these aspects? She said, no, it's nothing. I said, it's fine, then you come like an open slip.
2: So it was a speculation from her.
4: Samar said that she's had multiple. I said, it may be multiple or whatever. So in that context, I asked that will this kind of commitment to the marriage last, even after the marriage, jo bhi piche ho gaya, so ho gaya.
2: That brings me to a question. The second follow-up question was, will you do it in the future?
4: Yes. Is that not a relevant question? Isn't that a relevant question?
2: Is it to your own babu?
4: Why not to any human being? I would ask the question. Somebody who's telling, who has had this kind of an intimacy in the past.
2: So do you feel having multiple partners at one point, not at the same time?
4: Is it not relevant to ask that after marriage also, will it continue? Because sometimes it becomes a habit. Promiscuity, it can be a habit.
2: Why was that question
4: there? Why not? Why not? Once this has come to my knowledge that it's not one partner which she disclosed, she hid about other people also. She said, yeah, see, I asked, see.
2: Stayed with you.
4: 1 minute. She said, yes, I've been with other people also. I said, to what extent? And why was that? She said, no, it was just, I mean, hanging out and hanging out like dating. You know what you understand by dating. I said, I don't understand, but I understand what is sexual intimacy.
2: Yes.
4: So what's it of that level? She said, yeah, sometimes it has been.
2: Yes.
4: So all I wanted to know is, I mean, are you trying to cross-question me? What are you doing?
2: I'm not cross-questioning.
4: No, it is my right to ask my daughter-in-law.
2: Will you be going out with other men?
4: Why not? not?
6: Why not? After marriage, it will not be allowed. Of course, yes.
4: This is just not allowed.
6: Of course, yes.
2: Exactly.
6: In our households, it's not allowed.
4: Why not?
2: Bhaiya, please tell me you find it otherwise. Do you think it's a valid question to ask a bahu if she is going to hook up with other men?
5: But this tarike se conversation ho raha hai. Shaadi ke pehle baat bhi ki hai.
4: No, she has not told. She has not told.
2: Shaadi ke baad not told you, right?
4: No, she has not told.
2: She has not told us. She has told Samarth.
5: उन दोनों के बीच में था ये और बायर भी डिस्कसिंग था। I hate to hear all those things.
2: मैं भी नहीं था इसमें। But it is pinching me.
4: अगर it should pinch you.
2: A motherly figure.
4: This is being done by a sister.
2: A motherly figure in the house is asking such questions to her own bahu.
4: Why a bahu? See.
6: A bahu is a daughter. She could have asked her daughter also the same question.
4: See, I would have checked my daughter also. Yes. From anything, see, that is the pride of the family. I want to understand why you are hurt by this. Why you are hurt?
2: I don't understand why you are not hurt by this.
4: But what is the hurt? Tell me what is the hurt about.
0: All right, so this phone conversation really shows the extent of, family breakdown and the kind of questions that Twisha or the problems that she was facing from within her own family. Now, let's take a look at what Twisha's family is alleging took place just after her death. Remember, they had been calling her and then nobody was answering till they got the phone call where the mother-in-law said that Twisha has passed away. Now, the family is alleging, so let's take you through those allegations, that 46 calls were made post Twisha's death when she was found dead, that the mother-in-law made 46 calls after that. And these were two various people in powerful positions, because remember, Giribala Singh herself is a retired judge. She called the Lokayukta officials, magistrates, the police as well. Also, the CCTV technicians were also called. So that also raises a lot of questions. Why was she calling a CCTV a technician? Call details, WhatsApp, chats are all now under the scanner. And these are the points that the family is raising, the anguished family of Twisha, that's, searching for answers as to what led to her death and also whether there was any sort of cover-up after her death took place. Now, the spotlight or the attention is clearly on Giribala Singh. Remember, Samarth Singh, the husband, remains missing. He's now approached the High Court. But for the moment, the spotlight on Giribala, who is the person who's come forward. She is a Madhya Pradesh District Consumer Forum president. She assumed the position after retirement. This is one of those positions you get after you retire. She was a justice earlier. The Food Department has now sought a report on Giribala, and Madhya Pradesh government has invoked consumer rules. Prosecution fears have also triggered this action, as Twisha's family is now demanding justice, and there are fears that Giribala Singh could face some sort of prosecution. Twisha's family has now written to the governor demanding the removal of the mother-in-law, Giribala Singh, from the State Consumer Forum. NDTV spoke with Madhya Pradesh Minister Govind Singh Rajput on this.
7: संज्ञान है, बहुत ज़्यादा मामला तो है नहीं. मैं भी आप लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अखबारों में देख रहा हूँ. जहाँ तक पर्टिकुलर जो आपने नाम लिया, वो जिला भोपाल जिला फोरम में अध्यक्ष हैं, और इस पर जो नियंत्रण होता है वो पूरा का पूरा आयोग का होता है. हमारे मंत्रालय में जरूर ये पोर्टफोलियो आता है, लेकिन नियंत्रण आयोग का होता है. तो आयोग के लिए जांच के लिए लिखा गया है. अब जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.
8: सर, वो जमानत पर है, उनके परिजन उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर क्या थॉट करते हैं? मुख्यमंत्री से भी उनके परिवारजन
7: ये निर्णय तो आयोग लेगा ना. आयोग के लिए लिखा है, आज ही आयोग के लिए मैंने बात की थी ACS से, उन्होंने आयोग को लिखा है और आयोग निर्णय लेगा, जल्दी निर्णय करेगा.
0: Now, NDTV spoke with Anurag Srivastav, the lawyer representing Twisha's family, on the status of the case. Listen into what he had to say.
9: Twisha ke maut ke mamle mein hamare saath baatcheet karne ke liye unke parijanon ke vakil Anurag Srivastav hamare saath maujood hain. Baatcheet karte hain. Sir, ek 40 numbron ki suchi jo jari ki gayi hai, un numbron ko lekar क्या आपत्ति है, क्या आशंकाएं हैं परिवार को, और आप लोग क्या चाहते हैं?
10: देखिए, सूची मैं समझता हूँ कई एंगल से महत्वपूर्ण हो सकती है और महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती. एक डॉक्टर है तो निश्चित रूप से उसके संपर्क में दूसरे डॉक्टर्स होंगे और वो उनको कोई भी मुसीबत आने पे कॉल करेगा. मैं वकील हूँ तो मैं वकील की हैसियत से कॉल करूँगा. अब वो जज हैं तो उनके कई जजों से संबंध हो सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जज रहे होंगे. और अगर ऐसा सूची में, जैसा मुझे सुनने में आ रहा है कि कई जजों के नाम हैं, उनसे बातचीत की गई है, तो ये एक स्वाभाविक भी है कि बातचीत हो सकती है. वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस को सूचना नहीं दी गई। अब अगर जिस समय पुलिस को सूचना दी जानी थी उस वक्त आप पुलिस को सूचना नहीं दे रहे हैं, और 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक FIR नहीं हो रही है, और FIR होने के पहले ही 14 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लग जाती हैं, फिर वो सुनवाई के लिए 15 को रखी जाती हैं और 15 को ही FIR लॉज होती है। तो इन सब सर्कमस्टेंसेज, ये जितनी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को कनेक्ट करते हुए ज़रूर एक संशय उत्पन्न होता है कि ऐसे समय पे जब आपको पुलिस से बात करनी चाहिए थी तब आप किन्हीं और लोगों से बात कर रहे थे और वो लोग कौन थे, ये स्थिति है।
9: भोपाल कोर्ट में आप लोगों ने सूची दी है और जांच की मांग की है इसकी?
10: नहीं, हमारी तरफ से अभी जांच की मांग नहीं है। हमारी तो मांग है कि CBI को मैटर दिया जाए और CBI के समक्ष इस सब चीज़ की हर एंगल से जांच की मांग रखी जाएगी। अभी तो देखिए परिवार को इस बात पे भरोसा ही नहीं रह गया है, भोपाल के और हमारे मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं उन पे परिवार को विश्वास नहीं रह गया। बहुत सारी चीज़ें हैं विश्वास नहीं रहने की। 12 तारीख से परिवार डिमांड करता रहा, 15 तक FIR नहीं हुई। 15 को FIR होने के बाद हम और परिवार इस उसमें है कि चलिए पुलिस अब एक्शन ले रही होगी, DVR और CCTV फुटेज उनने जब्त की होंगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गिरीबाला सिंह 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, इंटरव्यूज़ करती हैं और खुद ही CCTV फुटेज रिलीज़ करती हैं। अब वो DVR और CCTV फुटेज उनके पास कैसे हैं? जमानत होने के बाद वो जिला न्यायाधीश रही हैं, जमानत हो गई थी तो खुद ही उनको केयर रख करना था कि उस घर में ना रहें और पुलिस को मौका दें कि उसमें इन्वेस्टिगेशन करके और चीज़ों को जब्त करें, बट वो उनके हाथ में थी, पूरा घर उनके हाथ में था। और उसके बाद भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि 18 तारीख को एम्स ने एक लेटर पुलिस को लिख दिया था, जो कल पुलिस ने 20 तारीख को कल लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि एम्स ने 18 तारीख को हमको इन्फॉर्म कर दिया था कि -4 डिग्री सेल्सियस में शव को रखना ठीक नहीं है और -80 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 200 गुना कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो हम जब बार बार एम्स को लिख करके परिवार डिमांड कर रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार डिमांड कर रहा है कि 2nd PM होना चाहिए, और अगर मान लीजिए एम्स 18 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है तो 18 तारीख को ही अगर परिवार को इन्फॉर्म कर दिया जाता तो 18 तारीख से ही परिवार मेहनत करता है कि इसको कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ -80 डिग्री सेल्सियस की व्यवस्था हो।
0: All right, now the big question is, where is Twisha's husband, Samarth Singh, who's been missing for the last 9 days since Twisha was found?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: FIR should be filed against him. BJP has also termed his language as unconstitutional. Earlier, Rahul Gandhi had said that whenever they meet RSS workers, they should tell them that the Prime Minister and Home Minister and the organization have betrayed Dr. B.R. Ambedkar and attacked the constitution. He was speaking at a rally in Rai Bareli and he was telling the people he was addressing that this is what they must do. Union Minister Piyush Goyal responding sharply to Rahul Gandhi's remarks, calling his language abusive, and said that Rahul Gandhi's remarks are a proof of the Congress party's weakness.
1: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
2: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
3: जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्यूजेस आर द वेपन ऑफ द वीक। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत का विश्व पटल पर सम्मान।
4: देखिए, कांग्रेस की हालत ऐसा एक दिशाहीन पार्टी हो गई है। देश में कई चुनाव हुए हैं, सक्सेस रेट कांग्रेस का बहुत ही कम है। अब अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व के लिए फिर किसी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाना ये चल रहा है। इसी का परिणाम है कि शायद वो मायावती से मिल रहे हैं खुद का अस्तित्व बचाने के लिए।
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस तरह के शब्द।
0: All right, some breaking news now coming in from the Bangalore airport, from the Bengaluru airport, where in Air India suffered a tail strike during a go-around at the Bengaluru airport. That is the initial information that is coming in. This is flight AI 2651 operating from Delhi to Bengaluru, and this is on the 21st of May, experienced a tail strike during landing. That's today. The aircraft landed safely and all passengers and crew disembarked normally, so there was no sort of injuries or damage done. However, this is the big breaking news now coming in with Air India suffering a tail strike at the Bengaluru airport. As we said, this was during a go-around at the airport and its flight AI 2651. All right, let's go across to Vishnu Shrom for more on this story. And Vishnu, the good news is everybody disembarked normally, but take us through the details of what exactly happened here.
6: You know, I just got out of a program, so I haven't gotten all the details so far. From as I understand it, and we've got a statement from Air India, that this was an Airbus airliner, either an Airbus A320 or a 321 AI 2651, Delhi to Bengaluru. It experienced a tail strike during landing. In fact, some of the images, and we should have them up very shortly, indicate that it appears to be a fairly serious one. This was an aircraft with the Vistara livery, as I understand it. Remember, Vistara has been acquired by Air India. But there is an inquiry which is going to be taking place. Some of the pictures which I have seen...
0: Explain to us what it means, this tail strike during a go-around.
6: Seem to indicate it was fairly... it was quite a tail strike. Now, what is a tail strike? Where an aircraft can have a tail strike either when it takes off or it lands. A tail strike on landing is when an aircraft comes down and it doesn't come down at the correct angle, and therefore the tail of the aircraft makes an impact.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आग प्योर मसाला।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।

0: हूँ, बहुत बोल्ड लड़की थी, 6 फिट की हाइट और इतनी स्मार्ट, मतलब मिस पुणे रहना या मॉडलिंग करना या एक्ट्रेस रहना, वो लड़की अपने लिए ऐसा कर लेगी, मतलब हम तो नहीं सोच सकते। और वो इतनी जॉली नेचर की लड़की थी, सबको इतना पसंद करती थी, वो अपने लिए इतना सोच सकती है, मेरे को नहीं लगता। और 5 महीने की शादी में बिल्कुल भी नहीं हो सकता इस टाइप का। तो अगर आप किसी को हैरेस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो मेंटली बिल्कुल डिप्रेशन टाइप का अगर आप किसी को कर दो, चलो ठीक है, वो कुछ बोलेगा करेगा, ये थोड़ी ना किसी से सीधे सुसाइड कर लेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
1: जी, आपने बातों में जिक्र किया कि ट्विशा के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे,
0: बिल्कुल
1: इसके बारे में आप बता पाएंगे कि क्या पर्पस था 2 मोबाइल फ़ोन का, और फिर पहले एक ही मोबाइल कॉन्फिस्केट किया गया?
0: उसके पास 2 फ़ोन थे, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था। एक उसका ऑफिशियल नंबर था, एक उसका जो घर पे जिससे सबसे बात करती थी, और जिस टाइम उसका मर्डर हुआ उस पर सिर्फ एक ही फ़ोन दिखाया गया है, और एक फ़ोन उसका गायब कर दिया गया। वो कितने इन्वेस्टिगेशन के बाद, मतलब 3-4 दिन बाद शायद बरामद किया गया है।
1: 2 फोन क्या क्यों रखते थे, क्या वजह थी?
0: ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ उसके पास 2 फोन थे, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया
1: तो
0: हुआ है।
1: उन्होंने दूसरा फोन क्यों छुपाया, क्यों नहीं दिया फैमिली मेंबर्स?
0: शायद कुछ हो सकता है उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है या उसकी चैट हो सकती है। और जो हमारी जो चैट आ रही है वो उसकी मदर के फ़ोन से आ रही है, उसका फ़ोन कहाँ है, उसकी चैट्स कहाँ हैं, वो किसी को नहीं पता।
1: ट्विशा क्या डर के कारण अपने फोन में रिकॉर्डिंग्स रखती थी कि?
0: शायद बिल्कुल हो सकता है कि उसको डर था कि ये मेरे साथ कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, या उसको लगता था कि मैं अगर, मतलब उसको होगा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ या कभी आगे काम में आएगा या जो भी है।
2: राइट, लेट्स गो अक्रॉस टू माय कॉलीग अनुराग फ्रॉम दिस। अनुराग, सो मेनी लैप्सेस राइट नाउ। ऑफ कोर्स द फ्रेंड आल्सो सेइंग दैट द पोस्टमार्टम आल्सो हैज लैप्सेस रिगार्डिंग हर हाइट। अबॉर्शन वाज कंसेंशुअल बिटवीन बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ। इट वाज ओनली आफ्टर ट्विशा अबॉर्टेड द चाइल्ड दैट गिरीबाला सिंह द रिटायर्ड जज स्टार्टेड कैरेक्टर असैसिनेटिंग ट्विशा। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन आल्सो ड्यूरिंग द राउंड्स एज टू हाउ मेनी फोन्स डिड ट्विशा हैव, फ्रॉम वेयर आर द चैट्स बीइंग रिवील्ड। अकॉर्डिंग टू दैट इंटरव्यू दैट वी हर्ड दैट शी गिव टू एनडी TV, Twisha's friend Prachi goes on to say that Twisha had 2 phones, and one was for the official purpose and the other for personal use. She also perhaps kept evidence. She also kept evidence and recordings, thinking that perhaps something untoward can happen to her. All right, we're slipping into a very short break, but come right back. News and updates continues here on Prime 5.
3: को पावर्ड बाय सीपी प्लस, ऊपर वाला सब देख रहा है।
4: कीर्ति फ्रॉम बरेली इज अ सेकंड ईयर एम

0: side. And their entire opposition right now looks politically motivated rather than being principled and empathetic. And that is one of the biggest reasons why you see these people whom they are trying to support. And I don't see anywhere across the country or across the globe slum structures, shanties of five-story. These are the places where there were five-story structures. I have entered in those areas. I have met people over there. Most of the people who are now crying foul are the people who had occupied first floor, ground floor, third floor, and first floor, second floor, third floor shanty zone in the slums, which were illegal from day one, which are illegal even today. These people are not rehabilitated in any of the SRA schemes. And that is the reason why they wouldn't get a house. It is very clear, crystal clear. And let me point out one simple thing. As I said, in hardly 20-25 kilometers, where Bandra is situated, 5,000 shanties or structures were demolished just last year. There was not a single protest. None of these opposition leaders went over there. They didn't say a single thing because, as I said earlier, the residents of those places didn't belong to a particular community. And Garib Nagar, I would like to tell you, I would like to point it out to you, it is 90% minority occupied place. And it is the new vote bank of UBT. It is the vote bank. It has been the vote bank of Congress for a very long time. If you have seen videos there, they have said clearly, openly, that jab tak Sunil dat the, tab tak humko koi nahi chhuta tha. And since the time things have changed, it has gone. And you can't blame the BMC for it because it is not the BMC land. Those lands, let me point out one simple thing. Very long back, I think 2007 or 8, I was covering a story. Rail Land Development Authority wanted to auction that particular piece of land. Adjacent demolitionism carried out. You know who objected to it? The slum dwellers who were not even there on that particular land. And it got derailed. Till now, that land hasn't been auctioned. Crores of rupees that could have come for railways infrastructure hasn't come in.
1: Okay, these are so the same people. Yeah, I think the political background has been very clearly explained by Varun Singh. तो फर्क सिर्फ इतना ही है आनंद दुबे जी कि जब चारकोप में हुआ था तो किसी का प्रकोप नहीं हुआ था. अब अगर यहाँ गरीब नगर में हो रहा है तो सबकी आत्मा अंदर की जाग गई है. फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर वोट बैंक का नहीं कंसिडरेशन था, यहाँ पे था. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसीलिए आज सब एम्पथी, आप थोड़ा दिल दिखाइए, ये सारी बातें अब हो रही हैं. चारकोप में किसी का दिल नहीं दुखा था. आनंद दुबे जी.
2: पद्मजा जी नमस्ते. सभी को मेरी राम राम, वंदे मातरम.
3: राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम.
2: देखिए जब किसी भी, हाँ थैंक यू थैंक यू, जब हमारे देश के किसी भी भूमि पर अगर गैर कानूनी ढंग से कोई कब्जा करता है, अतिक्रमण करता है, तो सरकार एक लड़ाई लड़ती है, कानूनन प्रक्रिया में जाती है. आज नहीं कल 10-20-25-50 साल बाद उसे जीतती है और उसे फिर अपने पास लेती है ताकि जनहित के कामों में उसको समर्पण किया जा सके. बांद्रा ईस्ट की भी वही कहानी है. गरीब नगर एक जगह है जहां पर लोगों ने बरसों से अतिक्रमण किया था. सरकार, रेलवे ने लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ कि भाई इसे खाली करा लो और इसको अपने पास ले लो ताकि यहाँ रेलवे का विकास हो सके. यहाँ तक तो सब ठीक है, ताली बजाने वाली बात है, कोई विरोध कर ही नहीं सकता. हमें तो राजनीति करनी भी नहीं और हमें आती भी नहीं है. लेकिन 12 बजे की कार्रवाई के बाद, पहले दो घंटा पहले, किरीट सोमैया नाम के एक बहुत बड़े नेता हैं मुंबई के, वो आते हैं और कहते हैं यहाँ लैंड जिहाद है. उसके बाद फिर वहाँ पर बयानबाजी शुरू होती है दोनों तरफ से, कुछ भाजपाई, कुछ राष्ट्रवादी वाले, कुछ कांग्रेस वाले, या जो भी पता नहीं कौन आते हैं. वहाँ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पुलिस आती है. इसमें हमारा क्या रोल है भाई? हम कौन है? हम राज्य सरकार में हैं? नहीं है. हम महानगर पालिका में हैं? नहीं है. हम केंद्र में बैठे? हम नहीं है. हम कौन है? मतलब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं सब लोग कि जैसे आनंद दुबे की पार्टी ने सबको वहां बसाया है. आनंद दुबे की पार्टी ने
3: आपका एमएलए मेरे
2: तो हमारे एमएलए को सिर्फ हमारे, अब शान सब टूट पड़े, सब कौरव की तरह जैसे कौरव झुंड बनाकर पांडव पर टूट पड़ते थे वैसे कूद गए. अब शांत रहो, पहले धीरज रखो. धीरज, पेशेंस एक ऐसी चीज है, योगा से आती है. सुबह जल्दी उठा,
4: ज्यादा योगा की बात मत करो, पता चले आपके अलायंस के उद्धव जी जो है आपको फोन करके जरा डांट लगा देंगे.
1: Let him finish, let him finish. बोलिए बोलिए आनंद जी. हाँ, किरीट सोमैया, किरीट सोमैया ने सारा राय था.
2: गदाधारी
1: नंबर वन.
2: हरी शान, सुनिए पहले मुझे बोलने दीजिए. हमारे विधायक वहां से चुनकर आए. विधायक का जब कोई चुनाव लड़ता है

0: उसे 80,000 90,000 1,00,000 1.5 लाख वोट मिलते हैं, वो 500,000 1,50,000 वोट से चुन के नहीं आता, बहुत बड़ा वर्ग उसे चुनकर देता है, जिसके पास बहुमत होता है वो चुन के आता है। तो हमारे विधायक बांद्रा ईस्ट के विधायक हैं, वो किसी एक गली के विधायक नहीं, वो पूरे एरिए के विधायक हैं। ठीक है, इसमें सभी का साथ सभी का विकास है। नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं कि इस देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सबका साथ सबका विकास करें, लेकिन किरीट सोमैया को नहीं समझा पाते कि भैया जब प्रशासन वहां पर कब्जा ले रहा है आप कौन हैं, आप वहां क्यों गए।
1: तो आप कह रहे हैं कि पत्थरबाजी किरीट सोमैया की वजह से हो रही है।
0: सवाल आनंद दुबे से पूछा जाएगा,
1: पत्थरबाजी किरीट सोमैया की वजह से हो रही है?
0: नहीं, किरीट सोमैया ने वहां पर घी डाला है, आग जलाई है, माहौल तैयार किया है, और उस पर ये जो कौरव हैं जो इस समय बैठकर मुझ पर टूट रहे हैं, इनको मौका मिला है, इनको तस्तरी सजा के दी गई है कि जाओ जाओ प्रियवरों जाओ।
2: अरे शकुनी जी,
0: आपको हिंदू शकुनी जी करो, तब तुम्हें तवासी मिलेगी, तब तुम्हें इनाम मिलेगा।
2: शकुनी जी सच्ची बात बोले,
1: 30 सेकंड रिस्पॉन्ड, आई विल गो टू तहसीन पुनवाला।
2: चलिए, मैं मेरे मित्र जो आज डिबेट में शकुनी का रोल प्ले कर रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। आनंद भाई मैं सुन रहा था आपको, सुनिए, अब मैं कुछ शब्दों को प्रयोग करूंगा, आप सुनिएगा किसने बोला। और आनंद भाई मैं कहता हूं इसको कंडेम करना चाहिए, आग में घी नहीं डालना चाहिए। कोई सज्जन है, ये सज्जन कहते हैं इफ देयर इज अ रायट टुमारो देन पुलिस शुड आल्सो फाइंड आउट हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अरे आपका एमएलए कह रहा है कल दंगा हो सकता है, उसके पास ऐसा कौन सा तथ्य है कि दंगा हो सकता है? कल को मैं आनंद जी आपको कुछ बोल दूंगा तो क्या आप हाथ में पत्थर उठाओगे और जाके क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे मारोगे? क्या बात कर रहे हैं?
0: अब मुझे समझ नहीं आ, पद्मजा जी,
2: बोन्स बीइंग पेल्टेड ऑन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी,
0: वन मिनट,
2: सेन मैन, अ वाइज मैन लाइक आनंद दुबे, हू इज फ्रॉम, यूज्ड टू बी फ्रॉम बालासाहेब ठाकरे'स पार्टी, नाउ इज फ्रॉम सोनिया गांधी'स पार्टी, इज फॉरगेटिंग दैट इट वॉज आदरणीय बालासाहेब ठाकरे उस साइड की एक एक एनक्लोजर को घुस घुस के मारो और हटाओ।
1: आनंद दुबे
0: वरुण सरदेसाई जी का पूरा बयान सुनवाइए पद्मजा जी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो अजीत दादा गुट के हैं वो वहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, कल अगर दंगा शुरू हो जाएगा तो क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, कैसे करेगी, उनकी छानबीन होनी चाहिए।
2: माहौल बिगाड़ना मतलब क्या?
0: आप तो इतनी अनुभव,
2: मैं कह रहा हूँ आनंद भाई, माहौल बिगाड़ना मतलब क्या?
0: जो लोकल है वो चिंता कर रहा है क्षेत्र के लिए,
2: कैसे माहौल बिगाड़ना है? मुसलमान मेजोरिटी इलाकों में माहौल क्यों बिगड़ता है भाई? एक जैन में बैठे डिमोलिशन की बात आई थी,
0: कर देंगे
2: लोगों ने उसका हाथ धरे, हाथ में पत्थर थोड़ी उठाया था।
0: हमारी पुलिस क्या इतनी कमजोर है? पुलिस को जांच करनी चाहिए,
2: कैसे माहौल बिगड़ गया,
0: चौकसी करनी चाहिए,
2: बताइए,
0: तपास करनी चाहिए,
2: ये जो गुंडे हैं भैया
0: किस दल के हैं?
2: आप लोग घर पे कहां छुपे थे? स्टोर करते हो
0: ने पुलिस पर कैसे हमला किया? हमारी उस पुलिस पर जो हमारी सुरक्षा करती है, हमारी वो पुलिस जो हमारे जान माल की रक्षा करती है, ऐसे हमारी पुलिस को बदनाम कौन गुंडे कर रहे हैं?
1: ओके वेट, लेट मी ब्रिंग इन तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला
0: तो विधायक वरुण सरदेसाई है।
1: इज इट ओनली वन किरीट सोमैया हु इज रिस्पांसिबल फॉर द एंटायर फ्लेयर अप?
3: Thank you, Padmaja, after 27 minutes for finally coming to me. You know, I'll tell you, and I'm a supporter of the opposition, I'll tell you why in the opposition, and Varun's here, we lose. Because our arguments are not coherent and we confuse the voters. I love Anand Dubey, bhai. He's one of my favorite guys. But there is a great Anand Dubey, bhai, and then there is a great Varun Sardesai, bhai. Varun Sardesai is the MLA from that constituency. And to read out Varun Sardesai's comments, first of all, Varun Sardesai didn't win by 80,000 votes. He won by 11,000 votes. He won on the Congress votes. Let me be clear. He won on the votes of the Muslims there. There is no if, no but out here. The Muslim voters of the Congress voted Shiv Sena UBT, which I think the Congress shot itself in the foot. It's another matter.
1: That seems gentle reminder to Garib Nagar voters that these are Congress votes and not Varun Sardesai
2: votes. I
3: want every Muslim to watch NDTV. I will show that how the Shiv Sena is a bunch of hypocrites, that they say one thing for national media, for the middle class media, and their MLA who wins on your vote says another thing. Varun Sardesai, whose bite you started with, defended the voters out there who are the illegal encroachers. This is one thing of the Shiv Sena's hypocrisy. But let's come to the issue at hand. Look, there are certain things. These are illegal encroachers except for those 100. Those 100 have still not been

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं, खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसकी जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था MTP का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है तो मैं भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देती, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर। सो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन, हालांकि 33 इयर्स में टू रिवर्स टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे।
1: Shifting our focus down south now, the CM race in Karnataka has been blown wide open. This has been blown wide open as NDTV's explosive news break reveals some brand new information in the newest edition of Karnataka's Game of Thrones. The final call lies with the High Command as new contenders emerge for the CM chair. Now, sources told NDTV that a Congress High Command meeting is expected in Delhi soon, where Congress Chief Mallikarjun Kharge and Karnataka in charge Randeep Surjewala will be meeting Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. It is also believed that Home Minister G. Parameshwara has emerged as a CM contender now, as the state has never had a Dalit Chief Minister before, and all current Cong Chief Ministers other than Siddaramaiah belong to upper caste. Listen in to what D.K. Shivakumar has said, after which this whole row erupted. Taking a quick break here, don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: used to pray. But then after marriage, the two timing prayer, which is necessary for everybody as per Giribala Singh, who's a retired judge, is not mandatory and is not what is being seen in the house daily. So she said that Twisha Sharma is unstable and not fit for the family. Listen in if you do not believe me.
1: एक बार देखने गए थे और इसने क्योंकि उस समय बताया यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है आई विल हैव एटलीस्ट फोर चिल्ड्रेन अम्मा आई लव दिस मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है लेकिन सुबह मैं जैसे वॉक करके आती थी पौधों पर पानी डाला वो कभी कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ आई सेड यार त्विशा तुम तो बता दी पौधे बहुत पसंद है तुम कभी आई मीन एंड वी लव प्लांट्स इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे यू डू योर वर्क आप जितना कर सकते हो मेरे लिए तो हर पौधा इज अ लिविंग एंटिटी हमें बचाना है उसको बट इसका ये जो इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना बच्चे नहीं पैदा करने हैं खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं
2: आपको जो करना है धरना प्रदर्शन बट गिव हर द पीस ना उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर
1: साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी उसको दवाइयां ऑल इज अ प्राइम व्हिच शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है उसने शुरू भी की थी एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का अगले दिन ही बोला था उसने अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है तो मैं भी कुछ हार्मोनल दवाइयां देती विच आई नो वाज नॉट पॉसिबल तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वाज देयर सो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन हालांकि 33 इयर्स में टू रिवर्स To have the first child is a lot of happiness. लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी न समर्थ को न मुझे
0: Shifting our focus down south now, the CM race in Karnataka has been blown wide open. This has been blown wide open as NDTV's explosive news break reveals some brand new information in the newest edition of Karnataka's Game of Thrones. The final call lies with the high command as new contenders emerge for the CM chair. Now, sources told NDTV that a Congress high command meeting is expected in Delhi soon, where Congress chief Mallikarjun Kharge and Karnataka in charge Randeep Surjewala will be meeting Chief Minister Siddaramaiya and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. It is also believed that Home Minister G. Parameshwara has emerged as a CM contender now, as the state has never had a Dalit chief minister before and all current Cong chief ministers other than Siddaramaiya belong to upper caste. Listen in to what D.K. Shivakumar has said, after which this whole row erupted. Taking a quick break here, don't go anywhere, keep watching NDTV.

0: अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह मैं जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्विशा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी, आई मीन एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने, हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा था, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो, मेरे लिए तो हर पौधा इज अ लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको। बट इसका ये जो, इट वॉज अ कम्प्लीट फार्स, इट वॉज अ कम्प्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी, या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना, बच्चे नहीं पैदा करने हैं, खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ जो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना, उसकी जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयां ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी, एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। एक्चुअली उस समय जब उसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था MTP का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है, तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयां देते, विच आई नी वॉज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक, हर हेल्थ एंड वेरी गुड काउंसलर वॉज देयर, तो शी सेड वंस यू टेकन योर डिसीजन, हालांकि 33 इयर्स में टू रिवर्स, टू हैव द फर्स्ट चाइल्ड इज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे।
1: Shifting our focus down south now, the CM race in Karnataka has been blown wide open. This has been blown wide open as NDTV's explosive news break reveals some brand new information in the newest edition of Karnataka's Game of Thrones. The final call lies with the High Command as new contenders emerge for the CM chair. Now, sources told NDTV that a Congress High Command meeting is expected in Delhi soon, where Congress Chief Mallikarjun Kharge and Karnataka in charge Randeep Surjewala will be meeting Chief Minister Siddaramaiah and Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar. It is also believed that Home Minister G. Parameshwara has emerged as a CM contender now, as the state has never had a Dalit Chief Minister before, and all current Cong Chief Ministers other than Siddaramaiah belong to upper caste. Listen in to what D.K. Shivakumar has said, after which this whole row erupted. Taking a quick break here. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.